इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आके

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Thank you.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: चुनार बीट्स विद आरजे दीवा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम और हाय, इस धड़कन को धड़काते हैं आप। हर दिल की धड़कन को और जोरों से धड़काने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 9999 is the number। दोस्तों याद रखिए, आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही कमेंट्स में प्यार जरूर दें, क्योंकि आपका प्यार बनाता है रेडियो चुनार को सही मेरे यार। जानम समझा करो, जी हाँ, डाउनलोड करो हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मैं हूँ जॉक्स, यह है मजेदार शो, सबसे धड़का दे रहा।

0: bunch of zoos.
1: Going out.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: What is frequency? How do you get it? Can radio channel most our show was over was from my brother. Ashka weather.
2: Radio channel. Weather update.
3: क्या कहता है आज का weather update? बताएंगे अभी नहीं होगा लेट. जी आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस. वही अभी के लिए सनी और इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे बट देयर आर चांसेस कि बादल सूरज को घेर लेंगे दोपहर होते होते.
2: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट.
3: जी हाँ, अगर इस मौसम में आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक एक्स्ट्रा लेयर्स जो है वो साथ लेकर जाए, चाहे वो रेनकोट हो, छतरी हो, एक एक्स्ट्रा लेयर या बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ लेना तो जरूरी है. अभी के लिए यूवी इंडेक्स वीक पर है, ह्यूमिडिटी 75%, विंड स्पीड 3 किलोमीटर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:47 पर, आज का सनसेट होगा 7:27 पर.

यहाँ इश्क करे, आशिकी करे, ये है कि अपने व्यूज, इमोशंस, थॉट्स, हालात, जज्बात हम तक जरूर पहुंचाए। रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स, सिरे हट दरगाते रहो।

Jerry B. Chinar Beats ve Darce Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 4 FM.

के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: bunch of zoos. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: द रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है द व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप क्योंकि कहत क्या नहीं और लोगों ने भी ये बात है मानी की जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट जो हमें बताती है कि खवातीन जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 5 में से 1 लड़की में पाए जाते हैं PCOS। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऑनलाइन इस चीज़ को सर्च करते हैं और इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं यानी PCODs या PCOS के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दूं आपको कि कंफ्यूजिंग बता रही है रिपोर्ट कि इंटरनेट पर जो मामला है कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है जिसकी वजह से इंसान या तो ज़्यादा बेफिक्र होता है या ज़्यादा डर जाता है। देखिए, जब भी कोई हेल्थ इशू हो तो हमें चाहिए कि हम एक मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, एक डॉक्टर के पास जाए, उन्हें बताए क्या है दिक्कत। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल और PCOS से निपटने की जो तैयारी है करें तो कुछ चीज़ें जो करने की ज़रूरत है, अपना ब्रेकफास्ट फिक्स करे, एक प्रोटीन रिच मील ज़रूर ले और आफ्टर ईटिंग 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर ले। जी हाँ, 7 से 9 घंटे की स्लीप और साथ ही साथ 2-3 घंटे पहले ही डिनर कर ले, लाइक बिफोर गोइंग टू बेड 2-3 घंटे पहले। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे ही डिनर कर ले। और सबसे जरूरी, अपना स्ट्रेस मैनेज जरूर करें। रेस्ट, यू सुपर हीरोज, यू गर्ल्स आर सो परफेक्ट। रेडियो 90.4 FM, मैं हूं जॉक्स। जी हाँ, परफेक्शन के साथ स्टे हक्ड, तड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे।
5: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
4: जी आज का कोट कहता है दैट बीइंग फुली अलाइव इज वंडरफुल एंड बीइंग हाफ अलाइव इज अ टॉर्चर। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल मैं हूं जॉक्स सिडेक्ट धड़काते रहो।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: रेडियो चुनाव 94 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो के सफर में मैं हूं आपका साथी आरजे
3: ज्यूस।
2: जी हाँ, हम और आप दोपहर के 12 बजे तक जुड़े हुए और वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए। शागर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं सर इतना तो हम इंतजार कर पाते हैं कि टॉपिक आग बोले ताकि हम भी टॉपिक के बारे में जान पाए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रेडियो जनाब से। थैंक यू सो मच शागर हमसे जुड़ने के लिए, इस प्यार के लिए, इस इज्जत अफजाई के लिए। अभी जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899904904 नंबर 9999904904। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। रेडियो 90.4 एफएम और आज बात होने वाली है उन विमेन की जो कि अपना नाम दुनिया में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी चमका चुकी हैं। वसुशो में आज का टॉपिक विमेन इन स्पेस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन खवातीन की जो कि अपना नाम एरोस्पेस में भी कमा चुकी है और दुनिया को कर रही है इंस्पायर। यहाँ आज बात होगी उन हीरोज की जो घर को खास तो बनाती हैं, गृहस्थी तो चमकाती हैं और उसके अलावा दुनिया को इंस्पायर करती हैं टू डू मोर टू लिव मोर। रेडियो 90.4 एफएम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जरूर हिस्सा लें, शो का हिस्सा जरूर बने। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। 8899904904 है नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। जॉक ज्यूस के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप सिटी हक धड़काते रहो।

घटलाना की बात करें जिन्होंने उड़ान भरी और स्पेस वॉक परफॉर्म किया 25 जुलाई 1984 या उसके अलावा क्रिस्टीना कोच, जेसिका मेयर हु स्टेप्ड आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टुगेदर इन अक्टूबर 2019। जी हाँ, नाम कम पड़ जाएंगे, वक्त कम बच जाएगा, लेकिन इन कॉन्ट्रीब्यूटर्स के नाम कभी खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है इन एरोस्पेस और स्पेस इंडस्ट्री वो गिनते गिनते तो भैया दिन भी जाएंगे। रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजदार शो, व्हाट्सएप हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बनने के लिए 9999904904 इज द नंबर। जी हाँ, अपनी लगन हमसे लगाए, अपनी बात हम तक पहुँचाए 9999904904, ये बटन अपने फोन में दबाए। जॉक्स के साथ मजदार शो, व्हाट्सएप मेरी जान से टहक दरगाह तेरा।

क्रिटिकल फ्लाइट ट्रैजेक्टरी को क्रू किया फॉर नासा मिशन जैसे एलियन अलन स्पार्ट्स फर्स्ट अमेरिकन स्पेस फ्लाइट या अपोलो 11। वही अगर हम मार्गरेट हैमिल्टन की बात करें तो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन को लीड किया और नासा के लिए ऐसे कोर्स बनाए ऑन बोर्ड कोर्स जिन्होंने

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन याद रखिए, आपने डीएम करना है ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। यह है हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, सिटी हक्ट मेरे यार धड़का।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: ख्वाब है तू, नींद हूं मैं।
4: दोस्तों, रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड की दुनिया से अपडेट से लेकर टेक वर्ल्ड से रिलेटेड खबरों तक सब पहुंचाया जाएगा अब तक। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मैं हूँ जॉक्सूस, ये है रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। आप बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: तो रेडियो चुनाव 90.4 FM बॉलीवुड न्यूज़, और बॉलीवुड न्यूज़ में आइए बात करते हैं सलमान खान एंड जैकी श्रॉफ।
1: बॉलीवुड न्यूज़।
0: जी हां, ऑफिशियली बताया गया है कि रिपोर्ट्स आ गए हैं दैट जैकी श्रॉफ हैज स्टार्टेड शूटिंग फॉर SVC 63।
1: बॉलीवुड न्यूज़।
0: जी हां, सलमान खान की अपकमिंग मूवी जिसकी शूटिंग इस टाइम चल रही है मुंबई में, और सोर्सेस का कहना है कि वन ऑफ द की रोल्स जैकी दादा को मिला है SVC 63 में। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, और भी बॉलीवुड न्यूज के लिए आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूं जॉग ज्यूस, आप एंजॉय कर रहे हैं शो, वो सब धड़काते रहो।

0: उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि शादी करूं, आई एम सुपर हैप्पी बीइंग सिंगल। मेरे कुछ मतलब उन्होंने कहा है कि उनके कुछ 100 के करीब फैमिली मेंबर्स और दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि कोई मर्द आए और ये चीजें बदल जाए।
1: नहीं मरना गवारा
0: प्यार। वेट नाउ 90.4 एफएम, अगला सेगमेंट टेक टॉक्स, जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार।
1: मुझे भी
0: जॉक्स उसके साथ, हर दिल की धड़कन रेडियो चनार सिटी है, धड़काते रहो।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कॉन्टैक्ट

कॉन्टैक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

के साथ कनेक्टेड था और प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू सिग्नल जाती थी ब्रेन में कि के कैसे और क्या फंक्शन करना है। लोगों ने इसका इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में सीखा, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जब ब्रेन को स्कैन किया गया तो ब्रेन का जो एक्चुअल हैंड का स्कैन है ब्रेन के अंदर ह्यूमन हैंड का, वो कहीं ना कहीं फेड हो रहा था। ब्रेन नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहा था और उसी के चलते साइंटिस्ट को ये जो एक्सपेरिमेंट है रोकना पड़ा, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ब्रेन अपना जो ओरिजिनल ब्लू प्रिंट है उसे खो दे। Radio Toronto 90.4 FM, heard its frequency but stay hooked.

0: कौन आया?
1: और इस फ्रीक्वेंसी रेडियो चैनल 90.4 FM, दोस्तों वक्त हो चला है कि आज के लिए आपसे इजाजत ली जाए। वैसे सैटरडे कल संडे वीकेंड एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा पहाड़ों से दूरी बनाइए क्योंकि मौसम विभाग का कहना है देयर कैन बी चांसेस फॉर फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, सो प्लीज लाइक सेफ्टी और सावधानी के साथ ही अपना वीकेंड एंजॉय करें। दिस बाबा जू साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आरजे दीपा आपसे जुड़ेगी कुछ ही देर में लेकर शो चिनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट। आप एंजॉय करने वाले हैं, यू स्टे हुक्ड। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मा सलामा।

Jeremy. Çınar Beats ve Dörce Diva.

0: grita.
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही हैं, मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। So I'm super duper excited and the show भी स्टार्ट हो चुका है। हंगामा नहीं है भैया, हंगामा मेरे बाद होने वाला है। फिलहाल हंगामा ड्रामा तो हम करने जा रहे हैं अपने शो में, यानी कि बहुत कुछ। बिकॉज देखिए आज सैटरडे है और सैटरडे पे मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, हर एक इंसान को होती है जो भी काम करता है। एम्प्लॉई का दर्द क्या जाने का बाबू, जब उससे पूछेगा कि संडे कितनी ज़्यादा वो कीमती भी नहीं लगती है, हमें ऐसा लगता है कि बस मजे आ गए। तो मज़ा और बढ़ाने के लिए मैं हूँ यहीं पे और आपके साथ हूँ बराबर दो से। दो नहीं ढाई तक, क्योंकि ढाई बजे तक कुछ एक्स्ट्रा होने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा शो, एक्स्ट्रा बातें। मैं आप हालात जज्बात ख्याल और क्या क्या है बचा वो सभी हो जाएगा। मैं तो सीख लिया इश्क, मैं तो सीख लिया बैक टू बैक सॉन्ग चलाना आपके लिए ओनली ऑन रेडियो चुनार।

पल का मजा तो आप ही ले सकते हैं। बैक टू बैक सॉन्ग्स है दैट टू ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन मेरे दोस्त सरस धड़का।

0: Chinar Beats with Dhar Chetiba, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

on repeat show Chunar beats up enjoy kar rahe only on radio Chunar 90.4 FM de sari baatein ho rahi hain. We are talking about national highway of Jammu and Kashmir. तो क्या है नेशनल हाईवे का हाल? तो बता रही हूँ मैं अभी, ये है सवाल कि नेशनल हाईवे का क्या है हाल. तो हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है. तो अभी रिपेयर चल रहा है रोड का, जो है अभी काम चल रहा है. सो क्लियरेंस अभी नहीं आई है और जब क्लियरेंस आएगी, ग्रीन सिग्नल्स आएंगे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, हम आप तक पहुँचाएंगे, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू. फिलहाल के लिए आप ऑल्टरनेट रूट से जा सकते हैं, मुगल रोड से आप जा सकते हैं एंड उसके अलावा आपने अपना आप एयर भी जा सकते हैं. आप ज़रूरी है कि हमें पता हो कि अभी के लिए अगर आप नेशनल हाईवे से जाए तो आपको बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. तो पहले इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, जो गाइडलाइंस दी गई है, हमारा जो रूट है अभी वही है, वो ख़राब है, वो बंद पड़ा है.

तो अभी ऐसी कोई भी गुस्ताखी ना कीजिए। अपना आप लोगों का ख्याल रखिए और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और साथ में क्या, साथ में यही है कि गलत जगह पे ओवरटेक ना कीजिए और ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो कीजिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हम सब का फर्ज है।

देखिए प्यार तो हो चुका है और वो भी बेशुमार हो चुका है, और क्यों ना बताए प्यार है तो जताइए, और है गुड इवनिंग लव है तो बताइए 8899049044 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट

करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई

असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

और डाई, यानी ये समझ लीजिए कि अगर हम आज डर गए तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। डरो या मरो बट लड़ो अपने लिए, लेकिन अपनी चीज़ों को हाथ से नहीं जाने दो। तो क्या था डू और डाई, क्या चीज़ था, क्या ये पावरफुल स्लोगन था फ्री पीपल फॉर लाइक अंडर ब्रिटिश रूल, एंड कैसे इसने इम्पैक्ट किया, क्या चीज़ें बदली इस चीज़ की वजह से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको भी अगर पता है इसके बारे में कुछ, मुझे बताइए। शो कैसे बन जाए 8899049049X व्हाट्सएप कीजिए। शो टू नॉर्वीज कैसे बन जाइए।

beats on repeat. Show Chunal beats ab enjoy kar rahe honi on radio Chunal 90.4 FM and we are talking about Quit India Movement jo Mahatma Gandhi ne launch kiya 8 August ko and jise hum Bombay All India Congress session bhi kehte hai, Quit India Movement kehte hai, Bharat Chodo Andolan kehte hai. So ye historic civil disobedience call demand thi ki jaldi se British rule ko khatam kiya jaye, yani ki काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था हिंदुस्तानियों को, ब्रिटिश रूल में काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा था और तभी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि यहाँ से चले जाओ, हमारे देश को छोड़ दो. और तभी क्विट इंडिया मूवमेंट इसे कहते हैं. एंड 8 अगस्त 1942 को डिक्लेयर किया गया था इसको, अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ मुंबई में. स्लोगन सिंपल था, फिर से बता रही हूँ, इट्स डू और डाई, करो या मरो, यानी कि या तो लड़ो अपने देश के लिए, जान दो, मान लो, या फिर छोड़ दो, कुछ

ना करो, बट ये चीज़ है कि मरना या जीना इट्स नॉट दैट, इट्स दैट कि आप में कितना हौसला है कि क्या आप करोगे वो चीज़ ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सीख है कि अगर हम चाहे ज़िंदगी में हम किसी चीज़ को हाथ से नहीं जाने देंगे, हम मरते दम तक लड़ सकते हैं ताकि हमें हमारा हक मिले, जैसे गांधी जी ने तब स्टार्ट किया और कैसे हमारा देश फिर आज़ाद हुआ और कैसी चीज़ें हुई इसमें वो भी काफ़ी कमाल की थी, यानी कि लोगों ने किस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों ने ठान लिया था कि हम हमारे देश के साथ और हमारे लोगों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। वैसे आपका क्या कहना है मुझे बताइए, शो का ऐसा बता बन जाइए, आप बता सकते हैं कि आप क्या जानते हैं क्विट इंडिया मोमेंट के बारे में। शो का हिस्सा बनकर आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुना 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

शो चुनार भी सब एंजॉय कर रहे थे ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये सारी बातें हुई एंड वी वर टॉकिंग अबाउट क्विट इंडिया मोमेंट। हम बात कर रहे थे हिस्टोरिक सिविल डिसऑबिडेंस कॉल डिमांड की, यानी कि करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था। और फिलहाल के लिए शो खत्म हो चुका है, शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हुआ और आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899 04904 पर टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है और पहली रिक्वेस्ट आई है ईशा की। ईशा की रिक्वेस्ट पे आप ये ट्रैक एंजॉय कीजिए, मंसूब ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM। अभी स्टार्ट हो चुका है शो, आप अपना पसंदीदा ट्रैक सुनने के लिए कॉल कीजिए 8999904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसे बन जाए।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180

0: 8087199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी हाँ, यहाँ पर अजान की रिक्वेस्ट आई है स्ट्राइक के लिए, आप भी एंजॉय कीजिए। फिलहाल के लिए हम तो छोड़ नहीं जा रहे कहीं पे, असरा मेरे साथ है और मिलके हम एंजॉय कर रहे हैं अजान की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक, और एंजॉय कीजिए आप ये ट्रैक। और कुछ ही देर के बाद शो रेडियो वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा, आप भी शो का हिस्सा बन जाइए 8899904904 पर, जहाँ पर आप अपनी राय हमारे तक पहुँचाएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। सो फिलहाल के लिए शो म्यूज़िक ऑन डिमांड को टाटा बाय बाय कर देते हैं, ये लास्ट रिक्वेस्ट है, आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक ऑन रेडियो 91.4 FM पर।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Hey, it's Vedharche Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: शो रेडी गर्ल्स एंजॉय आप करने वाले हैं मेरे और किसी और के साथ। आई नो आप समझ गए होंगे कि कोई और कौन है, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं एकदम ही करेक्ट जज करते हैं। अब जज करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल है कि हंगामा नहीं है तो शो रेडियो गर्ल्स है, तो कौन है वो खुद ही बताएंगे।
1: मैं
0: देखिए ये मैं इतना हो गया ना कि थोड़ा सा वो हो जाता ना कि मज़ा नहीं आ रहा अकेला। जैसे हम नहीं जुड़ते हैं मेरे साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे रेडियो गर्ल्स में असरा नहीं होती है तो शो ही नहीं होता है, मज़ा तो दूर की बात है तो कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही जैसे आप हमारे साथ जुड़कर इस सफ़र को कंप्लीट करते हैं, वैसे ही रेडियो गर्ल्स को हम दो मिलकर कंप्लीट करते हैं। और रेडियो गर्ल्स में आज का क्या है टॉपिक असरा?
1: आज का टॉपिक कुछ खास है, वैसे तो हर दिन का टॉपिक खास होता है। रेडियो चुनार पे जो रेडियो गर्ल्स चलता है, हम साथ मिलकर बात करते हैं, वही खास है। और आज की टॉपिक की बात करें तो इट्स अबाउट अ सक्सेसफुल मैरिज, यानी कि शादी शादी जो करे वो पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। क्या ये सच है?
0: ये शादी वर्ड जो है ना, ये शादी क्या ही करे। देखिए शादी सुन के अज़रा का भी मुस्कुरा रही है, देखिए
1: आप भी मुस्कुरा रहे हैं।
0: सो देखिए मुझे लगता है एवरीबॉडी जब हम छोटे हुए थे

0: ना, सो एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट ओ माय गॉड
1: मैरिज, जस्ट लाइक गीत फ्रॉम जब वी मेट. मुझे शादी करने का बचपन से शौक था.
0: वो चीज ये है ना कि हमारे अंदर ही होती है कि भैया जी, अंदर जो हलचल होती है कि हाँ शादी करनी है. लेकिन जितना जितना इंसान बड़ा होता है ना, और आज की अगर हम शादियाँ देखें, दार अच्छी भी है एंड क्वाइट कह सकते हैं कि थोड़ी हैवी है.
1: एग्जैक्टली.
0: मतलब आप समझ जाइए कि शादी आज मुझे लगता है जेन जी का जो कॉन्सेप्ट है शादी टुवर्ड्स मैरिज, इट्स सिंपल कि प्यार है तो शादी कर लो और जो भी एज है शादी कर लो. बट ओवरऑल जो शादी के बाद मैनेज करना पड़ता है या हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें, या फिर अगर हम देखें सोसाइटी का इसमें क्या हाथ रहता है, या फिर जो हम एक्स्ट्रा वेगेंट, आई वॉज यस्टरडे टॉकिंग अबाउट दैट. सो उन चीज़ों की वजह से शादी थोड़ी डिस्टर्बिंग भी हो जाती है. फिर जो एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं उनकी वजह से डिस्टर्ब होता है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सक्सेसफुल मैरिज कैसी, एक मैरिज कैसे सक्सेसफुल रहती है, इट्स अबाउट कि एक मैरिज में दो लोग चाहते क्या है, क्यों शादी करना ज़रूरी है. आई मीन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
1: एग्जैक्टली
0: किस लिए शादी कर रहे हो, जो पता ही ना हो. इट्स नॉट अबाउट कि हमारे बच्चे कभी कभार कहते हैं घरों में कि अच्छा है ना यूजुअली कि अच्छा खाओ दरकार उनकी.
1: हाँ, so काफी लोग कहते हैं
0: फोर्स देम, बिकॉज जब वो मेंटली रेडी नहीं है तो उनका शादी का जो कॉन्सेप्ट है
1: वो
0: खराब ही होनी है. exactly. क्योंकि वो रेडी ही नहीं थे. देखिए वो फिर अभी हमारे इर्द गिर्द अब उस शादी का जो ये चीज़ है कि एज छसा या फिर एज निकलती जा रही है तो बस शादी करनी करनी है. सो ये चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें अपनी भी होती है. यानी कि हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट काफ़ी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है. बट यही तो चीज़ है कि हमने समझनी है कि हमारे बच्चों को हमने इतना तो फ्रीडम exactly. देना है कि वो खुद, इट्स नॉट अबाउट कि वो किसको चूज़ करे, इवन हमारी फैमिली ही क्यों ना चूज़ करे, हम खुद ही लव मैरिज करें. स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, देर आर डिफिकल्टीज इन मैरिज,
1: बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने लगती हैं. दीवा आई टोटली एग्री विद यू कि अभी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं चुन खानदरी करूँ ना, अरे मैं तो शादी, मैं तो बना ही नहीं हूँ शादी के लिए. मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली मेंटली रेडी है, मे बी उनके पास एक राइट पर्सन है, राइट टाइम है, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड. अब बहुत सारी चीज़ें देखिए, अभी की बात करें तो एक सक्सेसफुल मैरिज तब सक्सेसफुल होती है, एक मैरिज तब सक्सेसफुल होती है जब दो बंदे आपस में कंपैटिबल हों.
0: yes.
1: और एक उसमें से अगर एक भी इंसान, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कंपेनियनशिप है, तो अगर एक भी इंसान तैयार नहीं हो, जैसे कि आपने कहा कि कोई तैयार नहीं होता, जबरदस्ती शादी करवा लेते
0: yes.
1: तो वो उनकी शादी खराब लॉन्ग टर्म पे हो ही जाती है. वो बहुत कम है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं या कुछ वैसा होता है. बट अगर अभी की बात करें और अभी जो शादी है परिवार होते हैं
0: जुड़ जाते हैं,
1: तो उस वजह से भी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक शादी सक्सेसफुल हो, फैमिलीज भी आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए.
0: और जरूरी ये भी है कि जैसे आपने बताया कि दो, अगर एक इंसान रेडी नहीं है तो आगे खराब ही होना. ये भी है कि अब खराब वैसे नहीं हो रही बट अंदर ही अंदर से घुट रहे हो, तो वो समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे अभी खुश नहीं तो आगे भी खुश नहीं रहेंगे. फिर आपको वही पछताना होता है कि मैं लजकूर गाला तैयार मैं लोग लड़के.
1: exactly.
0: बट आप ही तो थे ना जो फोर्स कर रहा था, जो फोर्स कर रहे थे अपने बच्चों को कि नहीं कीजिए शादी, आपको शादी करनी ही करनी है. देखिए शादी मुझे लगता है कि वो ईजी खेल नहीं है, इट्स नॉट ईजी
1: नहीं है,
0: इट्स समथिंग कि जो लोग क्या चाहते हैं, वाई यू वॉन्ट मैरी, आपको क्या चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो आप चाहते हैं कि मेरे इस सफर में मेरा साथ दे. तो जब सामने हम कंफर्ट देते वो कंफर्ट हमें वापस मिलता है, क्योंकि जब दो लोग रेडी होते देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग.
1: अभी
0: अरेंज मैरिज की बात करें तो दो, एक लड़का लड़की चाहते हैं कि हम
1: शादी
0: करें,
1: हम तैयार,
0: सो दैट इज गुड. बट किसी को जबरदस्ती करना या किसी के मतलब इजाजत के बगैर उसका
1: प्रेशराइज करना,
0: सो दैट्स नॉट गुड. क्योंकि अभी अगर हम देखें फिर हम भी पछताते हैं, फिर वो एक चंद पल की खुशी के लिए हम किसी की लाइफ टाइम की खुशी छीन लेते हैं. डोंट डू दैट विद योर किड्स, एट लीस्ट डोंट डू दैट. शादी कोई करना चाहता उनकी टाइम पे शादी कर दीजिए. इफ समबडी वांट कि कोई सच में शादी करना, आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में,
1: एक नया पड़ाव,
0: एक खूबसूरत पार्टनर उनके पास
1: exactly.
0: है, प्लीज कर दो यार कर दो शादी इनकी. क्योंकि ये चीज सही टाइम में मिले ना तो मजा है. अब ये नहीं है कि पछताना तब है जब आपको पता नहीं होगा कि आप किस लिए शादी कर रहे हो. दैट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. कोई लॉजिक इसमें है नहीं, बस लॉजिक हमने लगाना है कि हम खुश हैं, हम क्या चाहते हैं, तभी शादी हो सकती है. यूं आंसर आपको क्या

0: लगता है.
1: बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है. और ऑनेस्टली, शादी एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा एक्टिविटी है सबकी जिंदगी का, कि आपकी लाइफ में या तो आप शादी का वेट कर रहे हैं, या तो आपकी शादी हो चुकी है, या तो आप बच्चों की शादी का वेट कर रहे हैं. तो exactly. शादी पार्ट ऑफ लाइफ है बस. तो इसीलिए आप जुड़ जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स हमसे शेयर कीजिए. आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में और अपनी शादी के बारे में?
0: बिल्कुल, 888-9904-9046 WhatsApp कीजिए और बताइए कि क्या है आपका एक्सपीरियंस शादियों के रिलेटेड.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल्स आप एंजॉय कर रहे हो ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम में और असरा आपके साथ बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल मैरिज एंड क्या चीज़ें हैं एक्चुअली जो हमारी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं असरा, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, आपको कोई पसंद है मुंह पे बोलो भाई मेरे को पसंद ही नहीं है. आपको कोई पसंद नहीं है आप उनको बोलो नहीं हो, आप पसंद हो बोलो आप हाँ है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हम मैरिज में चुप करके बैठते हैं ना कि सामने वाला पर्सन है इनको नहीं बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है दिल में क्या, तो ये ठीक है नाराज होना
1: सप्रेस करना exactly.
0: बट चुप रहना सहना दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन मैरिज कि हम लोग सेपरेट रहने लगते हैं, हमें दूरियां बढ़ जाती है
1: exactly.
0: और वही है कि कोई और ही चाहता होता है कि दोनों सेपरेट हो और बात ना.
1: बहुत सारी
0: चीज़ें हैं कि मुझे लगता है मिस कम्युनिकेशन सबसे वर्स्ट चीज़ है जो मैरिज सभी सक्सेसफुल नहीं हो रही है. क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि exactly. सामने वाला पर्सन क्या डिमांड कर रहा है, इस वाले पर्सन को सामने वाले वो क्या डिमांड चाहता है, सो दोनों म्यूचुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों को चाहिए क्या. आपको स्पेस है आप क्लियरली अपने पार्टनर को बोल सकते हो ये प्रॉब्लम है
1: अभी के लिए,
0: रेस्पेक्टिवली आप
1: रख सकते हैं
0: उनका डिसीजन समझ सकते हो, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट कर सकते हो, अपना डिसीजन रख सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड इट्स ऑलवेज अबाउट म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इट्स ऑलवेज अबाउट फॉरगिवनेस.
1: एग्जैक्टली और मुझे ऐसा लगता है कि दीबा कि जो आपने कहा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली रिलेशनशिप किसी भी मोड पर हो कम्युनिकेशन उसको रिवाइव कर सकता है.
0: बिल्कुल
1: ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो किसी भी रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ शादी या मैरिज में नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में किसी भी बॉन्ड में बात करना एक्सप्रेस करना इमोशंस को जाहिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर देखा जाए जो हमारे फादर जेनरेशन जो हमारे पेरेंटल जेनरेशन हमसे पहली वाली जो जेनरेशन है उनका जो मैरिजेस हैं बहुत सारे ऐसे मैरिजेस रहे हैं इट इज इन द आर्टिकल्स आल्सो सेंसस के तौर पर कि कैसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते ऐसे ही बने हुए हैं जिनमें हर दिन झगड़ा होता है बट वो अब अलग नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे हो गए. बट उनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि अगर हमारे फादर को हमारी जो मदर है उनसे प्यार है या वो कुछ कहना चाहते हैं बुरा लगा है या गुस्सा है या कुछ भी है वो आपस में कन्फेस नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बैरियर रह चुका है. और एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट इज हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी बीवी आपसे खुश है
0: यस दैट्स ट्रू दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल राइट नाउ बिकॉज अगर आपका पार्टनर ही खुश नहीं होगा दोनों को इक्वली दूसरे को प्रायोरिटाइज करना है. बट एक चीज है जो हमारे कश्मीर में होती है कि हम एक जो लड़का है ना वो भूल जाता है कि दोनों को मैनेज कैसे करना है. या तो जिस गोबर ये रोजान क्या बोलते
1: नमाज पढ़े
0: या तो वो फिर दावान चीज जनान मोहनू. सो आई बिलीव कि वो एक लाइन जो होती है वो ड्रॉ करनी पड़ती है एक मर्द को कि माँ का जो स्पेस है उसके बाहर किसी को नहीं जाने देना है
1: exactly.
0: जो बीवी का स्पेस है उसमें किसी को आने नहीं देना. सो ये आपको पता होना चाहिए इस बैलेंस करना जरूरी है कि माँ का दर्जा भी है और आपका बीवी का दर्जा भी है. सो इस वजह से भी क्योंकि कभी कभार इस वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं मैरिज नहीं चल पाते. ऐसे कितने केसेस है जहाँ पर हमारे इन लॉज की वजह से शादियाँ टूट गई हैं माँ बाप को प्रायोरिटाइज किया दैट्स गुड your mother father they are the important part of your life I mean mother jinka koi bhi muqabla nahi kar sakta duniya mein but trust me उनको भी मैनेज करना आपका काम है. अपने पार्टनर को समझना उनको कंफर्ट देना उनको समझाना शरीक हयात ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है
1: और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है.
0: तो मुझे लगता है कि आप बस आप समझ सकते हैं कि आपकी मैरिज कैसे खूबसूरत रहेगी जैसे आप काफ़ी ज़्यादा मच्योर हो वैसे आप अपनी बीवी को भी अपने जो शरीक हयात हैं उनको काफ़ी मच्योर बना सकते हैं. आप अपनी धर्मपत्नी को दिखा सकते हैं उनको कम्फर्ट दे सकते हैं अपनी मम्मा के पास भी आप उतना प्यार उनको जो वो डिजर्व करती है वो दे सकते सो दैट कोई भी नाराज ना
1: हो. और वैसे भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे दो चीजें तब कंपेयर होती हैं जब वो सेम कैटेगरी में आए. बीवी का दर्जा अलग है माँ का दर्जा अलग है फैमिली का दर्जा अलग है. तो

0: बेसिकली आप दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ही गलत
1: है।
0: हमें ये समझने की जरूरत है कि माँ बहन भाई फादर फैमिली जो होती है, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो, उन्हें इक्वल प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बट अपनी जो फैमिली है, यानी कि जो वो अपनी नई फैमिली शुरू कर रहा है, उसे भी अलग से एक उनका भी सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इधर पे भी कम्युनिकेशन का काम आ ही जाता है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आगे से जो लड़की है जो आपकी वाइफ है वो बात नहीं करेंगे कि वो क्या चाहती है। और सबसे पहले यू हैव टू हैव दैट, वो कहते हैं ना कि
1: स्ट्रॉन्ग
0: कम्युनिकेशन, एंड यू हैव टू हैव दैट विल कि आप दूसरे इंसान का एटलीस्ट सुन पाए। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, तुम मुझे समझ नहीं पा रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अगले वाले का सुनना नहीं चाहते, आप बस आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट जीतने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें हमारा ये चीज़ है कि हम समझे कि शादी इजी खेल नहीं है, बट शादी काफ़ी खूबसूरत एक स्टार्ट है, एक बंधन है,
0: जिम्मेदारी वाला स्टार्ट है।
1: तो अगर हम चाहे तो अपने दिमाग से, अपने सही इखलाक से हम एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर यही है कि हम कहते हैं कि सक्सेसफुल मैरिज अभी एग्जिस्ट नहीं करते। फिलहाल मैं तो कह रही हूँ कि एग्जिस्ट होती है, कम्युनिकेशन तो हमारा भी क्लियर है, टाइम आ गया है। अब उनको जाना है, जाना है असरा को,
0: मत जाइए,
1: क्या करें, जाना पड़ेगा,
0: ना जाओ,
1: हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आप हंगामा कैसे कर पाएंगे?
0: हाँ, वो भी है, चलो भाई,
1: चलो ड्रामा हंगामा होगा, झटके नहीं लग रहे हैं, शादी है, फिलहाल एंजॉय कीजिए जितना भी टाइम, सिंगल लोग भैया जी आज करो मौज वाला। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखे, मैं आपसे मिलूंगी बराबर मंडे 12 बजे, तब तक आप अपना ख्याल रखे, वीकेंड एंजॉय कीजिए, आप सुन रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल के।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

गाइस, सोए सोए सो तो हम हैं ही, क्योंकि देखिए आफ्टरनून है, खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है ना, क्या ही बोले। पर इसलिए आफ्टरनून शो की होस्ट और आपकी दोस्त आरजे असरा ऑन द माइक। एंड देखिए बहुत सारी बातें हैं, अभी शो शुरू हुआ है और देखिए यूजुअली तो दो से चार शो होता है, बट सैटरडे और वेंसडे होता है कुछ खास, दैट इज रेडियो गर्ल्स। अभी के लिए शो हंगामा शुरू हो गया है, जहाँ ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और क्या क्या नहीं होता है, लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। और देखिए आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, शो है हंगामा ड्रामा और क्या क्या नहीं होता है यहाँ। बट देखिए, कुछ देर पहले ही शो शुरू हुआ, 2:30 से लेकर 4 तक सैटरडे और वेंसडे को वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शो हंगामा होता है। और वाई 2:30 बजे, वरना यूजुअली 2 से 4 होता है, बिकॉज आज एक स्पेशल शो था और हर वेंसडे और सैटरडे रेडियो गर्ल्स होता है। पर देखिए, अभी वक्त है कि हम बात करें क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या रीपोस्ट कर रहे हैं, चाहे एक्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग एक्चुअली लिप सिंकिंग डांस रील्स, या कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेंड कर जाती हैं जो एक्चुअली जिनका कोई सेंस नहीं बनाता, बट लोगों को पसंद आ रहा है तो वी कांट डू मच अबाउट इट। और आज भी एक ऐसी चीज़ है, आज सोशल मीडिया पे सैटरडे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि जो भी सैटरडे से रिलेटेड, शनिवार बट वार से रिलेटेड गाने हैं वो सारे ट्रेंड कर रहे हैं। एंड पीपल एंड क्रिएटर्स आर मेकिंग रील्स अबाउट इट, बिकॉज शनिवार रात ही इन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उसके बाद संडे जो ठहरा। So everybody is celebrating on internet कि सैटरडे आ चुका है और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज देखिए एम्प्लॉय का जो खुशी है वो डबल हो जाता है क्योंकि संडे आने वाला है। संडे इज द फन डे, छुट्टी सुनते ही मस्त। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है इंटरनेट। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार। मैं बस यूं कही और यूं वापस आए।

0: hot. जी हाँ, शो चल रहा है हंगामा. मैं हूँ आरजे असरा और अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेलवे अपडेट. बिकॉज देखिए, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और अपडेट्स भी ज़रूरी है. और अभी की अपडेट ये है कि जैसा मैं 31 जुलाई से लगातार इस बारे में हर किसी को अपडेट कर रही हूँ और यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ कि 14 जुलाई तक 3 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं. मॉर्निंग की एक, आफ्टरनून की एक एंड इवनिंग की एक, जिनके बारे में मैं हर दिन बात करती हूँ. और वो ट्रेन बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन तक जाती हैं. बारामूला से 2 ट्रेन निकलती हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं आफ्टरनून एंड इवनिंग की. और अगर बात करें मॉर्निंग की ट्रेन, वो बानीहाल से बारामूला की तरफ जाती है यूजुअली एंड दैट इज़ कैंसल्ड. उसके अलावा जो भी लोकल सर्विसेज हैं, दे आर रनिंग एज पर द समर टाइम टेबल. और समर टाइम टेबल आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप, दैट इज रेल वन. अगर आप चाहते हैं कि रेल बिटवीन स्टेशन, ट्रेन की लाइव लोकेशन क्या है, कौन सा स्टेशन कहाँ है, इवन द लोकेशन ऑफ द स्टेशन एंड कौन से मिड स्टेशन आ रहे हैं आपके प्रॉपर डेस्टिनेशन स्टेशन से पहले, एवरी थिंग अबाउट इट, द प्लेटफॉर्म किस ट्रेन पे, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो तक आप को सिर्फ और सिर्फ एक ऐप में मिल जाएगा. एंड दिस इज द ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप. सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रेलवे लिंक नहीं, बल्कि पूरे पूरे इंडियन रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह लाइव अपडेट्स मिल सकती हैं. और बस इस बात का ख्याल रखिए कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे ताकि आपके शेड्यूल में कोई भी ऑल्ट्रेशन ना हो या यू वोंट फेस द ऑलमोस्ट कॉट द ट्रेन वाला मोमेंट.
1: मेरी शांति भंग करती है.
0: देखिए, टुडे इज सैटरडे, सो इट्स ऑल अबाउट फन एंड द वीकेंड वाइब्स. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 8899904904 इज नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

हाय, मैं हूँ आसरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार. रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन. सही है मेरे यार, और बहुत सारी चीज़ें. और अभी की बात करें तो कुछ ट्रैक के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है. सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट्स हॉट एंड इट्स इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स एंटरटेनिंग आल्सो. और अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, 8899904904 इज अ नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ एवरी बीट। शो है हंगामा और जैसे कि हमने कहा था और वादा किया वो निभाना। देखिए, आई एम नॉट दैट गुड एट सिंगिंग, मैं उतना अच्छा गाती नहीं हूँ, बट कोशिश करने में किया जाता है। और बस देखिए, गाना अगर साइड में छोड़ें और अभी की बात करें तो इट्स द टाइम फॉर द टॉपिक रिवील। अभी की बात करें, आज की बात करें, तो हम आज बात करने जा रहे हैं कम्फर्ट फूड्स के बारे में। देखिए, कम्फर्ट फूड होता क्या है? एक ऐसा खाना जो एक्चुअली आपको एक बहुत ही नाइस कोजी एक कम्फर्टेबल वाइब देता है। देखिए, खाना तो हम हर रोज खाते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी फेवरेट होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक्चुअली आपको अपने घर की याद दिलाती हैं, अपने चाइल्डहुड की याद दिलाती हैं, वो वॉर्म फीलिंग, वो महसूस होना कि कुछ अच्छा लग रहा है कुछ खा के। और देखिए, हर बार ऐसा होता है कि हर क्यूजीन में, चाहे वो अमेरिकन हो या हमारा जो इंडियन क्यूजीन है, कश्मीरी क्यूजीन स्पेसिफिकली बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीजें कि इफ आई एम सिक फॉर वन डे, अगर मैं बीमार हूं तो मैं ये खाना पसंद करूंगा, अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं ये पर्टिकुलर डिश खाना पसंद करूंगा। और वो सब चीजें, वो सब डिशेस कंफर्ट फूड में आती हैं। और हर इंसान का कंफर्ट फूड अलग होता है। कुछ लोग वॉर्म राइस से बनी चीज़ें खाना चाहते हैं, कुछ लोगों को मीठा पसंद है तो वो कुछ ब्राउनीज, आइसक्रीम या वैसी चीज़ें खाते हैं, कुछ सूप पीना पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी डिशेस भी हैं। कुछ लोग वाजवान खाना पसंद करते हैं जिन्हें वो अच्छा लगता है। कुछ लोगों, टीनएजर्स की बात करें तो उन्हें तो मोमो चाउमिन से ही फुर्सत नहीं मिलती। बट अभी की बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं कम्फर्ट फूड के बारे में। और हर किसी का एक पसंदीदा खाना तो, पसंदीदा डिश तो होती ही है। तो आप बता सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। और हमें भी बताइए कि आपका जो

पसंदीदा खाना है, पसंदीदा डिश है, वो कौन सी है? और शो हंगामा पे आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. 8899049904 इज नंबर, आई रिपीट, ताकि आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम तक पहुंचाइए और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं. अगर आपका कोई भी ऐसा फेवरेट फूड है जो आप बताना चाहते हैं कि आपका ये फेवरेट फूड है, क्यों है वो आपका फेवरेट, हमसे जुड़ जाइए और अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए. पार्टी तो है और कंफर्ट फूड की पार्टी है, और आप अब हमारी इस पार्टी में क्या ऑफर करेंगे? 8899049904 इज नंबर, आई रिपीट, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. मैं बस क्यों कही और यूँ वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। पे शो चल रहा है हंगामा, जहां है ड्रामा और इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, शो हंगामा है और आज हम कम्फर्ट फूड के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी डिश हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होती है, या कोई ऐसी चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं खाने में, चाहे बाहर हो, रेस्टोरेंट पे, घर पे खुद बनाया हुआ, या कोई ऐसी फूड का स्मेल भी। यस, दिस इज़ ट्रू। कोई भी खाने की जो स्मेल है उसकी वजह से भी आपको एक कम्फर्टेबल महसूस हो सकता है, वो वार्म फीलिंग महसूस हो सकती है, और आज हम उस फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप घर जाते हैं या अपने घर जाते हैं या खुद कोई ऐसी डिश पकाते हैं जो आपकी फेवरेट है, ठीक है, जब आप वो खाते हैं तो आपको बहुत स्लीपी महसूस होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं, वो खुद को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं और आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो वेट गेन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे डू इमोशनल ईटिंग। उन्हें बुरा लगता है किसी बात का, स्ट्रेस्ड होते हैं या खुश होते हैं, तो दे रिवॉर्ड देमसेल्व्स विद फूड। देखिए, देयर इज गुड पार्ट टू एवरीथिंग एंड देयर इज बैड पार्ट टू एवरीथिंग, बट हमेशा जिंदगी उस बैलेंस पे टिकी होती है, जो हमें हर चीज में एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी फाइंड सम काइंड ऑफ मिड वे, एक बैलेंस ढूंढें। और अगर हम पर्टिकुलरली कंफर्ट फूड की बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है कि जो हमारा ब्रेन है, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जब भी कोई दुखी सिचुएशन है, तो हमारा जो ब्रेन है उसे एनर्जी की जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा शुगर और फैट में मिलता है। और यूजुअली जो हमारा कंफर्ट फूड है, आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं, वो काफ़ी शुगरी होगा, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, चावल हो सकते हैं उसमें, या ब्रेड हो सकती है, नूडल्स हो सकते हैं, फैट यानी कि बहुत सारा बटर हो, आइसक्रीम हो, इन सब में अनसैचुरेटेड फैट होता है। बट ये बात भी है कि ऐसे अगर फूड क्रेविंग किसी को होती है, वो कंफर्ट फूड जिसे हम कहते हैं कि फूड ट्रीटिंग फूड एज अ रिवॉर्ड, वैसे तो ये चीज़ सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, बट देर इज अ वे टू बैलेंस इट आउट। कि आप हर दिन कंफर्ट फूड नहीं खा सकते हैं, बट आप इंटरवल्स पे खा सकते हैं, ताकि आपका वो जो लाइफ का कंफर्ट फूड, जो आपको वो साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है, मेंटली आप बहुत रिलीफ महसूस करते हैं जब आप कुछ अच्छा खाते हैं। दैट इज स्पेसिफिकली ट्रू। अगर

किसी इंसान, कोई इंसान किसी को जज करता है कि भाई ये खाने से कैसे ही तुम्हें रिलीफ मिलेगा, बट सच में मिलता है, बिकॉज देर आर हॉर्मोन्स, देर आर नर्व्स जो एक्चुअली आपको बहुत स्ट्रेस कम करते हैं अगर आप कोई फेमिलियर खाना खाते हैं. उस वजह से आपके आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके नर्व्स, हॉर्मोन्स को ऐसा लगता है कि आप एक सेफ प्लेस पर हैं. But we have to find a balance because that is the basic thing that we can do. अपने comfort food को enjoy करें, but साथ में ये भी जरूरी है कि आप अपने आप में एक balance create करें. जट पैदा हुआ है बस खाने वास्ते. देखिए, जट पैदा हुआ छान वास्ते या खाने वास्ते वो तो अलग बात है, बट एक बात तो क्लियर है कि बैलेंस क्रिएट करना हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है. अपनी लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट कीजिए, चाहे फिटनेस है और अपनी फीलिंग्स में से. फीलिंग क्या कहती है उसे भी समझिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, बट हमेशा एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फिटनेस भी काफ़ी ज़रूरी है. अब बताइए आपका कंफर्ट फूड क्या है. 8899-904-904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. और कुछ ही ट्रैक से बाद हम एक बहुत ही फूड और एक इमोशनल साइड के बारे में बात करेंगे जो माँ होती है, मदर्स किचन. मैं हूँ अस्टर, अभी के लिए बैक टू बैक ट्रैक्स, बट कुछ ट्रैक्स के बाद मम्मी और किचन का क्या एक रोल रहता है हमारी जिंदगी में उसके बारे में बात करेंगे. मैं हूँ अस्टर, सुनते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: एमजे बीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: Yo, boys, I am singing song. Soup song.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: You have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हंगामा पे सिर्फ ड्रामा नहीं हो रहा, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात हो रही है, दैट इज कंफर्ट फूड। एंड कंफर्ट फूड कैसे खूबसूरत है, बिकॉज वहाँ पे बात आती है हमारे मम्मी की। जो मम्मियाँ होती हैं वो आपके लिए जो खाना बनाती हैं वो सबसे लाइक टेस्टी लगता है। हर किसी को अपनी माँ का हाथ का खाना सबसे बेहतर लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम घर का खाना खा खा कर बोर हो गए हैं, फिर जब वही लोग बहुत सालों तक बाहर पढ़ाई, जॉब या किसी भी चीज़ के लिए घर से दूर रहते हैं, या अब उनको एक्सेसिबल नहीं है अपने माँ का हाथ का खाना, तो वो फिर उस माँ के हाथ के खाने का टेस्ट मिस ज़रूर करते हैं। और ये क्यों होता है, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है बल्कि साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। आप जब खाना खाते हैं, माँ के हाथ का खाना खाते हैं, तो दैट आपकी बॉडी के लिए वो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि एक मेमोरी है, आपके बचपन की मेमोरी, एक फूड सिक्योरिटी है। आपको मालूम है कि ये खाना बहुत ही प्यार से बनाया गया है। और कहते हैं कि खाना तब बहुत टेस्टी बनता है जो बना रहा होता है, जो शेफ़ है या जो कुक है, जो बनाता है वो खाना, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्यार से खाना बनाए तो उसका मजा बिल्कुल अलग ही होता है। और स्पेसिफिकली माँ की बात करें, मदर की बात करें, मेरी माँ, अम्मा, मम्मी, बहुत सारे नाम हैं, बट बस वो फीलिंग, वो प्यार

सेम है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनके मदर उन जो जिनकी मदर जो है वो उनके साथ नहीं है किसी भी रीज़न से. तो डेफिनेटली आई कैन बी वेरी श्योर अबाउट इट कि हर कोई अपनी माँ को और अपनी माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करते हैं. और ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो मेरा कम्फर्ट फूड भी मेरी माँ का हाथ का खाना है. जब इंसान घर जाता है मम्मी के हाथ का खाना खाता है तो बहुत अच्छा लगता है. एक वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि व्हेन यू स्मेल एंड टेस्ट योर मदर्स कुकिंग, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको एक रिवॉर्ड देता है कि आपका स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. और ये मैं नहीं कह रही बल्कि कह रहा है साइंस.

0: मेरी माँ।
1: और देखिए, माँ इतना खूबसूरत शब्द है, जिस जितना इसको एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है, जितना बोला जाए इस बारे में उतना कम है। माँ जब हाथ से खाना बनाती है अपने प्यार, वो सिर्फ मसाले नहीं झोंकती, वो सिर्फ तड़का नहीं लगाती, बल्कि अपने प्यार का तड़का भी उसमें होता है। वो प्यार, वो इमोशंस और वो फीलिंग कि मुझे अपने बच्चे को खिलाना है, और या कोई भी, चाहे आप थक हार कर दिन में स्कूल कॉलेज जॉब से वापस आते हैं, तो माँ सबसे पहले पूछती है कि खाना खाया, कुछ खाओगे। और वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके आसपास आपके मदर है, गो टू देम, हग देम एंड टेल देम दैट हाउ इम्पॉर्टेंट शी इज़ इन योर लाइफ। और सिर्फ मम्मी नहीं बल्कि पापा को भी, क्यों? क्योंकि फादर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट वंस इन अ वाइल जब आपके बाबा कुछ खाने के लिए बनाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। बट देखिए, बाबा का यूजुअली, फादर्स डोंट कुक एज सच, बट अगर मम्मी की बात करें तो एक बहुत अलग एनर्जी है, एक अलग स्पेशल प्रायोरिटी है ज़िंदगी में। अब जितना जल्दी हम अपने माँ बाप दोनों को ही, सिर्फ मदर नहीं, फादर प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, सो अगर जितना जल्दी हम अपने माँ बाप की इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि जो प्यार वो डिज़र्व करते हैं वो प्यार उन्हें देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अपनी और उन सब की लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम, और आप भी बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मैं बस यूं कही और यूं वापस आए।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि आज हम कंफर्ट फूड के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इमोशनल ईटिंग के बारे में बात की, हमने मदर्स किचन के बारे में बात किया, बट एक और पर्सपेक्टिव है इमोशंस और फूड का। देखिए, हर किसी चीज़ का दुनिया में प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। और खाने और इमोशन का एक नेगेटिव साइड भी है, बिल्कुल। और इमोशनल ईटिंग करना, यानी कि कुछ खाना रिलेटेड टू इमोशंस, रिवॉर्डिंग फूड एज अ फीलिंग को रिवॉर्ड करने के लिए आप जब खाते हैं, बट नेगेटिव इमोशंस को, चाहे आप अकेलापन दूर करने के लिए या बोर हो रहे हैं तो कुछ खा लिया, दुखी हैं, एंजाइटी हो रही है या है गुस्सा, जी हाँ, फिर पेट और दिमाग में हंगामा शुरू हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बिंज ईटिंग जिसे कहा जाता है, जो कि एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर भी है। और आपको एक डोपामीन हिट मिलता है जब आप बहुत ही शुगरी कॉम्बोज खाते हैं, फूड खाते हैं, या राइस रोटी बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में खाते हैं, हाई कार्ब्स हाई शुगर कॉन्टेंट खाते हैं, तो आपकी बॉडी में डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, बट धीरे धीरे आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, तो उनको एक एस्केप मिल जाता है, दैट इज ईटिंग एक्सेसिवली, बिंज ईट करना, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उस वजह से आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कितना खा रहा हूँ, फिर आपको गिल्ट होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। बट जब आप वो चीज़ें खाते हैं, डिशेज, चाहे बाहर की हो, घर पर बनाई हो, बट जब आप एक्सेस खाना खाते हैं, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर नहीं है, तो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, ओवरवेट ओबेसिटी बढ़ जाती है, और उस वजह से आपकी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, वो और ज्यादा डिटोरिएट हो जाती है। और जो डोपामीन साइकिल है, खाना खाने के बाद आपको डोपामीन महसूस होता है, मैं खुश हूं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आप उस डोपामीन साइकिल में फंस चुके होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें और

इस बात को श्योर करें कि हमारी जो लाइफ है, वी आर ईटिंग फूड लाइक अ मेडिसिन. देखिए, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका आस्थया नाम था, डॉक्टर आस्थया, ही वॉज फ्रॉम कोलंबिया, एंड उन्होंने ये कहा था कि जब आप अपना जो खाना खा रहे हैं, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, इसलिए ताकि आप अपनी जो, आप जो खाना खा रहे हैं वो इस तरह से खाइए एज इफ आप एक मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, मिकदार में खाइए, जो खाना है वो खाइए, जो लाइक एक्सेस कोई चीज नहीं खाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जब आप अपना खाना मेडिसिन के तौर पे नहीं लेते, कल को आपको मेडिसिन एज अ फूड खाना पड़ेगा. इट्स अ वेरी बिग कोट, इट्स अ वेरी डेप्थ वाला कोट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अब देखिए, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एंड दिस ट्रैक रंग दे बसंती, तुम बिन बुलाए तुम बिन बताए, दिस सॉन्ग हैज लाइक बिन रिलीज बहुत सालों पहले. जब रंग दे संती रिलीज हुई थी अराउंड लाइक 10 साल पहले, बट अभी की बात करें तो ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा अभी भी अंडररेटेड है. कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो एक्चुअली बहुत दैट दे आर जेम्स, बट उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया जाता है. रंग दे बसंती मूवी, आमिर खान, सोहा अली खान, और जो ये गाना है ये मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ में है, कॉम्पोजिशन ए आर रहमान की, एंड ऑफकोर्स जहाँ ए आर रहमान का नाम आता है तो वो उस उन ट्रैक्स में, उन म्यूज़िक, उस म्यूज़िक में कुछ डिफरेंट, कुछ खास तो ज़रूर होता है. तो आप इन्जॉय कीजिए वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स एंड वन ऑफ द ट्रैक्स दैट इज़ वेरी अंडर रेटेड फ्रॉम रंग दे बसंती. मैं हूँ असरा संतरे, रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की।

राखी, इट्स टाइम अप टू रैप अप द शो. आपको अभी घर जाना चाहिए क्योंकि इट्स 4:56 इन द स्टूडियो क्लॉक. आखिरी नगमा में आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगा, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन भैया, इस वादे के साथ कि कल संडे है, मंडे को आपसे फिर होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है दिल की बात साहिल के साथ. लेकिन म्यूजिक यहाँ पे बजता रहेगा, एंटरटेनमेंट का तड़का आपके लिए यहाँ पे. जी हाँ, आप सुन सकते हैं आज भी हस्ब रिवायत सुहानी शाम स्पेशल गाने मैंने आपके लिए क्यू करके रखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है और कल संडे को भी आप इंजॉय कीजिएगा. फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाज़त और उम्मीद यही है कि आप जहां कहीं भी रहेंगे खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे. एंड लेट्स होप कि टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स. साहिल मुजफ्फर सेइंग यू टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू.

जी हाँ, जलेबी भाई, दिस सॉन्ग इज रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड। और भैया, जब हम आपसे बतियाते हैं ना, तो घड़ी इतनी तेज रफ्तार से भागती है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे स्टूडियो की घड़ी मुझे कर रही है इशारा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,

0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल 90

0: Point for Rakan.
1: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ सा

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला

0: करा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: जाते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दिव...

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।